देखे जा, देखे जा, देखे जा, देखे जा, आर होए जाए दुफाला। एकी मजार खेला रे भाई की खेला, अरे बाहरे बाहरे बाबा, देखे जा।